कह पदम नम तुलान कश्याम ह पदम श्याम अनम नह पदम तनु नप मा इस तिम्पु न तुरिडोंग पुगुन मलेशिया पिसम्पुरान तनाह मलायु सबाह ओम सरावक पिनोइसो म्यांपाय सुंदुआन पिसम्पुरान तदाउ मलेशिया अकन कनपो सुसुयान तमत मापिना पकितो कामपायन कागरासन Om Tupus Toko sebagit Mogikion Malaysia. Mulong pia misuai bansa kobasanan Om Ugama ngat tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.